एक ओंकार सतगुर प्रसाद सानक सनंद महेश समाना सेख नागा तेरो मर्मा ना जाना सानक सनंद महेश समाना सेख नागा तेरो मर्मा ना जाना

श्री हर गोविंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है नानक मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदा ओंकार अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन्ना जीते पंच बिकार। तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघन विनाशन सोए। वाहे गुरु जी की फतेह विघन

जपी तपी लायक पुजारी जे रह है तह वह सो पिछारी आगे वह चलाक पारे हैं। सुदा सो बने हैं जोश के हैं तिनो तह ज्यादे लह ज्यों त्यों पीतो ससत निहारे हैं। सिख

फिरत फिरत प्रभ आया प्रयातौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला

अनाहता जुग जुगे कोवे आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सो एका बार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेस तिसै आदेस आद नील नाद अनाहत जुग जुगे कोवे एक दूजी बव लख हो हे लख हो है लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एतरा हे पत पवड़िया चढ़िया होए एकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुति ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुति थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धरन साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काख हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाटत घड़ी है बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहि जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथा सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथा भगत वसै के लो करह नंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथा खंड मंडल वर भंड जे को कथा तंत नंत तिथा लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विघ सै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पाहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार भुख लागन तताओ भांडा पाओ अमृत तिताल कड़ीऐ सब सचीत कसाल जिन कौ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाई या बुरियाई।

चाकर लगे चाकरी जे चले खसमें पहाए और मैं तुसनों अगली वजो पीदूना खाए खसमें करे परापरी फिर करे गैर तंदर पाए मजो गवाए अगला मनो पाना खाए जिसदा दिता खावना तिसके ऐसा बास नानक पुन

अपने चरण पर एक नाम दियो मन मनता बिनस न कतुं जात सतगुरु अपने कीनी दात एक नाम दियो मन मनता बिनस न कतुं जात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात अंगीकार कियो प्रभु अपने भगतन की राखी पात नानक चरण रहे प्रभु तुमरे सुख पायो दिन रात।

रंग नेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर तेरे घरे ना दे बजाई तू।